सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

कौन बने और बच्चों को

Muerte.

0: Frysti Swarovka.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया के साकर हो ना, बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन मैं सुस्ता से सुना के खत्म। एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी देवर गति का समय, देवर पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं। सुनता है सेकंड में पासवेतानर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रही है, तो पासवेत
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलती है, समझती है, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य % अब मान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, सम्मान संपर्क में, ऐसे नहीं तीन बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कमी पास विधान न होने नहीं देंगे। निर्माण झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे ऐसे कह देते हंसी में, क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी सुतह बना दे। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना दे। लिफ्ट से भी रॉकेट बन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, हर बच्चे को आज विशेष

और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

उसकी विधि

Ja, Santos.

0: उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता, फिर संकल्प के रूप में तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप प्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के व्रत शुभ भावना शुभ कामना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

So

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चेक करो, कभी दुख ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। दुख देने वाले भी तो होते हैं ना।

समझते हो, खराब समझते हो।

समझते हो? पहली लाइन तो लेना राइट है, राइट राइट है मधुबन वाले, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। पहली लाइन ले लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए।

ईशान कौन होगा? जा किचरा होगा वही परेशान होंगे ना। तो उस समय

Osama.

Jesus, one of my things.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Pacetti.

Τόσα κύσια τι. Κι σύμπη

Seco. Sede. Just understand.

this a wee? Why you want that law? Guess.

Mother.

0: परिवर्तन कर सकते हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: second. Yeah, don't see what. Sad. See what key. Gundialake. Or yadke gundialake. Alake. Naina. Acha. Balance. Agar 100% sivai 200% iyade dono ka balance hai balance antar parjat Parjatana Karam Yogi Ka Ardhiya Karam Aryat Siva Aryat Balance Saman Unaji Esine कोई समय याद सेते और सेवा कम या सेवा सेते याद कम जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है साथ है ना अलग हो सकते हैं ऐसे याद और सेवा साथ रहे याद अर्थात भाव समान स्वमान की भी याद जब बाप की याद रहती है तो सुते ही स्वमान की भी याद रहती अगर स्वमान में नहीं रहती तो याद भी पावरफुल नहीं रहती
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चाहिए।

Nastyť.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: ayam kumahan banana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: See ya.

0: जमाते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष कुछ सने के दिन में, सने में समय रहे, ऐसे ही सदा समय रहो, तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सारे फिरके की आत्माओं

0: सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माएं के कानों में सुनाई दे रहे
1: से पालना की है।
0: जैसे अभी आपका कार्य है, सारे फिरके के डाल डालियों और पत्तों की पालना करना नशा रहता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

Por si.

Sí.

0: पहुंचने का खाता जमा करने का और परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है हर सोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज जात का प्रोग्रेस कितने की और संगठन या परिवार के सने समीपता का कितना अनुभव किया। ये तीनी बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है, देखा है? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये कुश्ती का खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साखी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ
2: बातें ऐसे होती हैं जो
1: जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बन शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ ये कपड़ा तो है, मारो अच्छी तरह से। कपड़ा होने पहले से ट्रस्टी है, सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस घर का आता है ना तो घर बारो स्वरूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारिया फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशील
2: का वरदान का
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन की, तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे दे दे दे पाप समान बन जाना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृद्ध ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो देश आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता, कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे हो सकता। या करने की विधि नहीं आती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते

Am tuya. Si baja de rete. Pero mamá va a matarme que agarte. Lejen. Jesse Sakar, rope me. Sada bachon ke saath rahe. Aise. Vatan me bhi. Rehte. Que pena pap ko bhi maza nahi aata jaise bachon ko pap ke bina kuch sochta nahi aise pap ko bhi बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो सात का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे साथ निभाती रहती जैसे चित्रों में दिखाती है ना एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया लेकिन ये इस समय का गायन है अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब जाए चाहे रात को दो बजे या ढाई बजे किसी भी टाइम साथ निभाते

0: Beto. Sinters bercakar lagana. Kapi-kapi otak. Liken. Apa-apa afiat terobat me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Natural.

amica. Some.

Erde. Yeah.

Exercise.

치.

Anneke. Exercise. Cigara. Sare din me. En bajro. Jaise choti

Is it running?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी

Ese.

Lernkurve.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

Ist

Okay.

fuerte.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। वो क्या? अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? आते हैं वो ये वाला।

स्पष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए

सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर विजय प्राप्त

ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कातुर भी बैठे हो, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है तो वर्तमान समय

叫，这是叫，非是。इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है जहां जाओ, जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय।

0: యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ కి పెలే భీ బీచ్ బీచ్ మే పేపర్ లియే జాతే తో ఇస్ विशेषता क्या करेंगे साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको एक सेकंड में स्वीट साइलेंस के अनुभूति में खो जाओ क्योंकि साइंस और साइलेंस साइंस भी अति में जा रही है उस साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

dilema.

Fish. Hot.

झूठ नहीं सकते। आप फ्रिकिया के जा रहे हैं, ब्रह्मांड का स्थान फ्रिकिया में कहाँ दिख रहे हैं? चर में दिख रहे हैं। Found it.

Saman. Wie schießt?

学习。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा करता, चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो, वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा पड़ता। हर एक बच्चे से ये अनुभव किन्नों के नैनों में कोई विशेषता साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। क्वेश्चन उठे उन्हों के मन में, कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है, ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपन ने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई बीच में विघ्न आता है? रुकते तो नहीं है? बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का, संग

बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख खुशी।

0: योग से काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। एक दो को देख उनकी विशेषता को देखो, दूसरी बातों को नहीं देखो। सुनते भी जैसे नहीं सुनो, खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये

रहा करता है। बाप इतना भी फोर्स दे के कहती है, अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुने बाप दादा ने, आज थोड़ा समझ सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है, बुरा लगता है नहीं। अच्छा तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करती है, वर्णन भी करती है एक दो से क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करती है, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रेस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, तो खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का
creation. This chair, a root, a jal, uski dhuaye extra bharatiyon ko milti hai. Isliye kabhi bhi मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो मन को सुनने के बजाय अंतर्मुख

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है। नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारथ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं। वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है। अच्छा, पीछे वाले उठो, जिन्होंने रखा है वो उठो, खड़े हो जाओ। जिन्होंने रखा है आगे वाले भी खड़े हो, पहली लाइन बैठे रहो। हम ये अच्छा अच्छा यहाँ टीवी रखी है, अच्छा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है।

चलने सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए कोई को फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से 25 मार्क्स बनाई, जो पहला नंबर है, और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बनाई। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी ये मार्क्स जो है वो जमा होगी, पास भी तो अनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी

0: Sasori. Srimad Namananese. Masto Katotiena. Atme Java Ava Panapota Mel.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलती है, उसको रिकॉर्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना आगे के लिए। बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं। इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना हल्की बात नहीं करो। अच्छा फिर क्या कहें, ये बड़े इज्जत हो रहे बच्चे, कहेंगे बाप दादा तो जानती है ना, जानते तो है लेकिन कहा क्यों, जानते हुए कहा ना। तो ऐसे चुराना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य है छोटे छोटे जिसको हाजी करने एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे में पढ़ती है, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही करेंगे, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे निकल भी सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप में है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: में होगा 5 में होगा।

ciao.

Marina. Sempre.

切。

Achei.

Carson, shit.

stop

मनोरंजन। Peace.

0: Attention on both.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Okay, लिख के
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलती है, तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है क्यों? वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र हिंसा को हल्का नहीं करना। क्यों मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

на бог. Чай.

خوش کرتے ملن بنا رہی یہ سنتوشتا کی شکتی سب سے مہا

Hashtag Shaka.

Santo.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पहले बार आई हूँ तो कमाल करो, क्या कमाल करो, पहले नंबर का पुरस्कार ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ, बाप दादा की मदद सभी को है। दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो, करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़ संकल्प।

कोई एग्जाम्पल निकल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

0: नहीं तो जा नहीं है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सजनी बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसलिए, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया ये कोई काम

0: अभी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी जुबान से भी किया किया तो सही ना, तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएगी ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था, याद करो, अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो, मदद मिलेगी ऐसे ही याद करने से। इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो वो मदद मिलेगी, क्योंकि सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो, बस प्रॉमिस किया बस छूट जाते। याद अपना हमेशा याद रखो, कितनी सभा है, पाप तो है, चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं। तो जो चाहना है कहा है, हाथ उठाए नहीं, मन की मेरी चाहना है इसीलिए हाथ उठाए, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को न देख करके बढ़ने की जाएंगे और कौन बनेंगे, आप ही तो बनने वाले हो। इसलिए अपने में फेथ रखो, जो कहा है वो करके दिखाना है, ठीक है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताए तो रिजल्ट जमा

Kata स्वयं संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। बिना बिना संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और सेवा में

Φαρέτη. Απίπη. Τι καί τέγγε. Σαμκέ σανσάρ σανσκάρ. Απί σαμπανέιουε. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Mali bank ke order रहती है ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अल्लाह पहले पन और आलस और बहाने बाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अल्लाह पहला पन आलस

हमें जागरण देखने चाहिए। कभी भी देखो क्रोध आता है, अपमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है, कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये होता ही है, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया, तब हुआ, मैंने किया, रंग वो नहीं कहेंगे, ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज, ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते। आजकल क्रोध का बच्चा रोप रोप भी भिन्न भिन्न प्रकार के है, तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे जैसे पहले? विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का संकल्प ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, ये बहानेबाजी हुई ना। तो आज

0: चार को हल्का कर देते हैं तो क्या हिम्मत है जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे, वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे, हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प की कमी हो जाती हो जाएगा, चलता है चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है बातें, अपने हिम्मत नहीं चलती ना तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है समय महारथी है तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो, उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए, कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है? सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वभाव के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वभाव है, लास्ट नंबर का भी स्वभाव है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं। और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रखे आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी सिर्फ नाम नहीं लेते, कभी वो भी समय आएगा। जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसीलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, सबका दोष में नहीं है, हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, और करता क्या। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sede del mio papà d'ora, perché pronti così.

0: Oh no, perché? O senza me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sure।

Schnack.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

6 करोड़।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Pagkatsyoko. Papkada. Nay. Brahman Parivar. Me. Aneki. से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रही क्यों।

Lord Body Wargo. Dictolia. Vaptata Samaste. Ke Abjai. Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठो।

Yeah.

0: vocês. Tati, o quê? Pode ler. Tati, querida. Tu tá de legal. Que mochê.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

pee-pee.

0: किससे वापी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंधा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sa

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों के, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
2: बाबा याद प्यार देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने देंगे, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा। आपके हाथ में और देखा जाता है it

Bonito.

Coach Nate Monk.

say something.

Krishna. Is it?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना, और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएगी। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: रैम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है, देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुश्किलता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया से इशारा करो गेट आओ और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है अब तो खर्चा नहीं, घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है तो ये लहर हर एक जय भारत जय विदेश, अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता तो बेहद का वैराग ये कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएगा। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे।

Sabi, समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देखते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप दादा सभी बच्चों से

So

कोई मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से स्वयं के छोटी छोटी बातों से सुतई मुक्त हो जाएंगे। आप सब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है एकाग्र कांटा हो जाता। तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हट चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुधै सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जांपल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आजकल परमात्मा भी सैंपल देखने चाहते सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, तो पार्थक्य रूप में कौन मूर्ख देखने चाहते। शक्तियों द्वारा सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

娘。

संबंध देके पदार्थ देके संस्कार दे शब्द संवेद और विषय

संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में

Yes.

Jesse.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह अभी प्रैक्टिकल में है इतना ही अभी दीवार पुरुषार्थी बनना और बनाना संपन्न

इस पॉइंट के ऊपर भी स्वयं भी उमाकोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमाकोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभाशय रखते हैं। वायुमंडल में फैलो,

0: Babta da kuşer.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ती भी है, लेकिन किमिया और सिक्किया, किमिया रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया है, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्किया साथ साथ हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते वह कभी मन आपका मालिक होता? क्यों कहते हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते, तो मेरे के आप मालिक हो,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बहुत अच्छा।
3: देखो

恋

待。

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्रॉब्लम होती ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की वह स्पीकर अच्छे बनने की वह ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की ये प्रलभुत नहीं है, ये तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रलभुत है जीवन मुक्त की, कोई

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, आप हर एक बच्चा किस लक्ष्य में है। धीवर पुरुषार्थ ढीला पुरुषार्थ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये नहीं सोचो ठीक होना ही है। जो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप को किससे प्यार है। धीवर पुरुषार्थी बच्चा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज

स्टेज पर स्थित हो जाओ। पाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति पाप समान कार्य करते फ्रिश जैसे ब्रह्मा बाप को साक्षात

so

0: us? Our attention chalte firte karam karte beech beech mein karte chan.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Anak.

0: sì. Pacioco. Padam, padam, kuna. Mubarak dire.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

अपने जीवन में करनी है। पक्का पक्का पक्का पक्का पीछे वाले पक्के है ना। कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए

0: еще пациенток. Койки комсори. Так. Васона. Ремдельбан. Еще пациенток бан. Он косаёк. को नहीं देखना है लेकिन सहयोग दे नहीं इसको कहते हैं शुभ चिंतक पकड़ेगा ना सारे
1: समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करने पड़ेंगी।
0: चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल पे अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है। शुभ वायुमंडल बनाना, जैसे खुश पे फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती। कोई ना कोई खुश पे का साधन अपनाते हो, ऐसे वायुमंडल वाह अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप को देखा गरम करते, गरम के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान, न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, होते हुए भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल

0: कोर्स का कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही बड़ा, लेकिन सब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सदा सेवादारी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पद दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पद दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पद दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पद दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। कभी भी कोई पद दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो, समझ में आता है ये पद दुआ है, लेकिन पद दुआ अंदर धारण नहीं करो नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। अगर मानो उसको खत्म कर देना, एक पद दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो पद दुआ देके चला गया, लेकिन जिसने पद दुआ संभाली दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी अपन ने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कारण ये है, जैसे देखो फिर हड्डियां जो है वो आजकल तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समापति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स से, धारणा के पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन स्वाह नहीं करते हो शोक अग्नि में। और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती है ना बात की, वो ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, दस वाली मुरली पड़ी तो भी फिर आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में चलाया नहीं, स्वाह नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी पाप सागर में डाल समापन। इसलिए इस वर्ष में साथ साथ नहीं चल सकेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
2: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमारिया क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में बिठाए। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है। सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमस्टेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, बोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्वोन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण के भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किट-किट वाले नहीं बनना। योग्य टीचर क्यों? जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली है, अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली। अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाँ तो रहो एडजस्ट होने वाली सोच के, हाँ तो रहो। अच्छा इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अभी हैंड्स की कमी है, बाप दादा सभी को कह रहे हैं कुमारियों को, मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न फिर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

enviaron papnei atleta que cabibi harkananei kyoka.

राष्ट्र सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे

0: ऐसा वरदान सदा याद कर, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रई बन जाएंगे। समय के समित परमान वरदानों को हर समय
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा के साथ ही पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होता है। जो भी छोटी छोटी

0: poi picca mi odie. Tu vuoi figin? Ciuta vuoi apparao? Lekin tankarta? Ye kyo? Ye kese? Parivar ke connection me aata? Kyo ke bajaye? क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी, क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आई बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अबे हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी व आत्म अपमानी हलचल में अचल बना सकते हो। टाइम लगेगा क्या होगा? अभी ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां जाओ वहां स्थित कर सकते हो।

0: इसको कहा जाता है साधना। अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: व्यक्ति बिक जाए मट्टी में मिल जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई कौन से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, सने नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। कोई आनंद नहीं भरा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़े बड़े है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखती गई।
2: कौन सी विशेषता? तो यही कहा।

didn't.

यजमान और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर, सेवा के उन्नति में निर्माण

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जीवन की मर्यादा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कंबाइंड है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सर्व आत्माएं इस समय समर्थि अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके चरचित्रों के आगे सर्वा

Sí.

100% West. तो उसको बचाओ, ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट कड़ी में धोखा दे सकती है। नंबर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सारे दिन में स्वामी अपने प्रत समय फिक्स करो, आप यहाँ कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: अनुभव करके देखना। हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना। सफल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहा, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा। जो चाहते हैं उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना। जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
3: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है पीछे तो सब कहेंगे नहीं आया।
2: उसमें भी जब देखो सकता है तो ना नहीं कर, चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। देखो, पशु भी होते

0: मुझे वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय रखा है, तो वापस कर देना। बाबा, मेरा बाबा, अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। बाप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, जो सुने करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो, बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाए। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। ये अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसी है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है क्या? बाहर से मात्र टकराना है, देखना क्या स्वयं किनारा कर लो। या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चल तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना

0: 你不会多玩眼睛呢阿伯阿伯给开业了人间给呀被把电影给你现在把你的将没拉你阿伯给你说将没拉梦的把你拿来耶稣
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज चारों ओर के सर्व समानदारी बच्चों को देख हर्षित इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में So

0: इसलिए इस सामान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं, जो हिला सके, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो?
2: So

स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा है यो तो ग्रुप और बढ़ता जाए तो भारत की समस्या खत्म हो जाए।
4: जैसे जेल में सेवा की

0: Jesse. Coyote Krupski, yo. Eso sí es ya no. Osco Paribartan Garquetica. Arvo Yuta. Yutko Anbasonami. Esa que example nikalo jo atti chakra lo na usko tik karke dekha na mikramiyo hai nahi mat esa koi parivartan karke dekha jaise baap dada kehte hai na maik banao वैसे आप चक्रालो को शांत में बना के एग्जाम्पल देगा ऐसा ग्रुप लाना बना के ऐसा ग्रुप या लाना देखो कितना युद्ध है बहुत है अच्छे अच्छे और सब तरफ की है फॉरेनर्स भी है अच्छा अभी कोई आवाज फैलाओ थोड़ा थोड़ा सेवा तो कर रही हो खाली तो नहीं बैठे हो लेकिन कोई ऐसे जैसे पाप फार डालते हैं ना आवाज हो जाता है ऐसे कोई आत्मक पाप लगाओ एटम पाप नहीं आत्म पाप अच्छा बैठ जाओ मुबारक को बोल टाइम पर पहुंचने की मुबारक
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं है। इस जन्म का कनेक्शन तो बाप दादा यही चाहते हैं, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। जैसे बाप के तीन रूप हैं, ऐसे आपके भी तीन रूप हैं। ब्रह्मन फरिश्ता और देवता, इन तीन रूपों में इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Silly.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषार्थ be

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papito a Sa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अस्ता

0: bel fare il nasco. Passa nena, passa nena. Fice male a me, lana, pap cacame, lichen ap cacame, fice male.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकार रहे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। सागर

स्वरूप। लाइट हाउस पर भिन्न भिन्न लाइट्स की

0: चिल्ली की किरणाएं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी नहीं भी करते बाप दादा अभी ये चाहते जो कही तो गए ने हर कलप किए तभी गए ने, क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को कलप करने जाओ वो बंदा हुआ है, योग मेरा है। तो बाप दादा इस

0: ήξερε.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्तियों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लव टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए, नस्तिक आते जाए। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा चारों की लकी और लवली बच्चों को देख रहे
2: Yes.

से संपर्क आत्माओं के दिल से

कान में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखो? स्वमान की लिस्ट है, भले बिना बिना टाइम टेबल बनाओ, जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है। ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आते हैं ना, आते हैं, माताओं को आते हैं, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपने बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है स्वमान, बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो बाप दादा, एक पास की रिजल्ट देखने जाए थे, सिर्फ एक पास ज्यादा नहीं बताते, और जो एक पास संकल्प में भी निर्विघ्न रहेंगे, टेंशन की आवश्यकता है। तो चेक करना हरेक संकल्प में भी अपनी शक्ति है ना, तो क्या जैसे अपना निर्विघ्न रहने का प्लान सोचो, एक सुन रहा।